0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364460।
1: पीटो सांडी को मुआ

सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।